0: ऊनवरी कशिगन जबरी रज खुशी न गोल्डी न मज सरमान मानी
1: नवरात सतो बवरात जकुंक वच देव भाई थोड़ करी भान भान
0: ऊनवरी कशिगन जबरी रज खुशी

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

वो तुझ में है और मुझ में भी, तेरे हंसी में और मेरे उदासी में भी। पर उसे ढूंढने जाओ तो मंदिर नहीं, तेरे चढ़ावे का उसको लालच नहीं, बस तेरे कर्म जहां महाकाल।

तुझे देवों का देव महादेव कहूं, या कालों का काल महाकाल, या कहूं अघोरियों के भोलेनाथ, तू तो सभी के लिए समान है। तेरा छाया ही महान है, जिसके भस्म से श्रृंगार है, जिसकी चटाओं से गंगा की धार है। एक ही नाम है, एक ही ढाल है, वो है शिवाय।

0: मच्छरदानी में जो लोग सोते हैं, हम मच्छरदानी में सोते हैं, और मच्छरदानी में हवा आती है, मच्छर नहीं आते। मच्छर को जिंदा रहने से रोकने का भगवान महावीर का मनाई है। क्या मच्छर को मारने का राइट आपको नहीं है? आपको अधिकार कितना है कि आप अपना बचाव करें? इसलिए मच्छर की संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है, सुरक्षा भी है और अहिंसा भी है। और गुड नाइट का कल्चर, ऑल आउट का कल्चर, हिंसा का कल्चर है। और पूरा यदि अच्छी तरह से रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि जो जो ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, जो जो उपाय किए जाते हैं उसमें पॉइजन ही होता है। और वो पॉइजन यदि मच्छरों को मारता है तो पॉइजन को केवल मच्छरों में नहीं जा रहा है, पूरे रूम की हवा में घुल रहा है और वही श्वास आप ले रहे हो। तो श्वास जो मच्छरों को मारती होगी उतना जहर तुम्हारे भी लंग्स में जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब लंग्स ट्रांसप्लांट की बहुत सारी केस सामने आ रही है, लंग्स वीक हो रहे हैं। अब टीबी की बीमारी पीछे रह गई, टीबी की ट्रीटमेंट खोज ली है। लेकिन ये जो ऑल आउट के माध्यम से, गुड नाइट के माध्यम से, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनियों का नाम क्यों लूं मैं, लेकिन केवल जिक्र कर रहा हूं क्योंकि तुम मच्छरों को मारोगे तो पॉइजन तुम्हारे अंदर भी जाना ही जाना है। ये मच्छरदानी लगाना ये संवर है, मच्छरदानी लगाना क्या है? संवर है। और ऐसी जिंदगी को मच्छरदानी लगाना है, अपने पांचों इंद्रियों को ऐसी मच्छरदानी लगाना है, संवर। अपने मन वचन काया को ऐसी मच्छरदानी लगाना है, संवर। जो अच्छे लोग संवर नहीं करते हैं वे पछताते हैं, और अच्छे लोग यदि संवर कर ले तो वो पछताते नहीं। ये बड़ी टेजड़ी की बात लगेगी आपको, अभी उतना नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन 13 तारीख के बाद 9 तत्व के प्रैक्टिकल प्रयोग आपको सिखाने का इस चतुर्मास का मेरा लक्ष्य है। मैंने डे 1 से आपको कहा है कि ये गुरुदेव की भूमि है, और गुरुदेव की जब चौमा से दादा गुरुदेव रतन ऋषि महासाब के सानिध्य में इस नगरी में हुए थे, उस समय के मूर्धन्य श्रावकों को गुरुदेव अगम की वाचना देते थे, और जहां तक जिन जिन को याद होगा, जब तक गुरुदेव 28 मार्च के 92 के दिन भी गुरुदेव के सानिध्य में अगम स्वाध्याय चली रहा था, स्वाध्याय सुनते सुनते ही, आराधना करते करते ही गुरुदेव ने अपना अगला प्रवास शुरू किया है। इस चतुर्मास का मेरा लक्ष्य है कि उस परंपरा को पुनः प्रबल बनाना है, इसलिए 9 तत्व से शुरुआत कर रहा हूं। यदि 9 तत्व तुम्हारे पास है, 9 तत्व के प्रैक्टिकल प्रयोग तुम्हारे पास है, आई नो शायद बहुत सारे को 9 तत्व को थोकड़ा आता होगा, लेकिन फिर भी वो समस्याग्रस्त है, क्योंकि 9 तत्व को रटना अलग बात है और जीना अलग बात है, और आप जी सकते हैं। यदि आज का रेफरेंस दूं आपको, तो इजराइल ने अपने वहां पर आयरन डिफेंस बनाया हुआ है, कि कोई भी अण्वस्त्र, कोई भी क्षेपणास्त्र अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता है। इसलिए उन पर जो हमला हुआ वो अंदर से हुआ, ऊपर से नहीं हुआ, कि अंदर की व्यवस्था उनकी बनी हुई नहीं थी। संवर उसको कहते हैं, जब समय समग्र संवर हो जाता है सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। और संवर करना कोई मास्कमन करना नहीं है। गुरुदेव के जन्मोत्सव पर तपस्या करा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने अपने जीवन में कभी तपस्या, इतनी ऊंची तपस्या, लंबी तपस्या गुरुदेव ने कभी नहीं की। लेकिन गुरुदेव का संवर बहुत पक्का था। पांडव वनवास में थे और पांडव जैसे आप हो वैसे पांडव थे। जैसे आपको लगता है कि कभी भी मौका मिले तो प्रवचन सुनना चाहिए, संतों का सानिध्य करना चाहिए, मुझे नहीं याद आता है कि महाभारत में कोई रेफरेंस मिलता हो कि दुर्योधन कभी किसी धर्म सभा में प्रवचन सुनने गया हो। आपने तो महाभारत देखा है, बार बार देखा है। कल बहुत अच्छा सुधीर जी ने एक वर्ड दिया, दुर्योधन सिंड्रोम। क्या दुर्योधन सिंड्रोम? मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा। और मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके बच्चों को दुर्योधन सिंड्रोम से बचाना है तो गर्भ संसार का संवार उसके पेट में करा दो तो सिंड्रोम नहीं होगा। पांडव जहां जाते थे वनवास में रहते हुए भी संतों के सानिध्य में जाते थे, और दुर्योधन को तो संत सुहाने का सवाल ही नहीं, प्रवचन सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसको कौन चाहिए? शकुनी चाहिए। दुर्योधन किसके किसको सुनने के लिए जाएगा? हेलो, शकुनी को सुनने जाएगा, जरासंध के पास जाएगा, कंस के पास जाएगा, वो श्री कृष्ण के पास भी आएगा, वो द्रोणाचार्य के पास भी जाए तो द्रोणाचार्य को हुकुम देने के लिए जाएगा, द्रोणाचार्य की आज्ञा लेने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन पांडव वनवास में थे और वनवास में भी संतों के सहवास में जाते थे। ऐसे एक आश्रम में पहुंचे और पांडव को देख करके संत ने प्रवचन दिया, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म से व्यक्ति सुखी होता है। इस पर इन दो सूत्रों पर उन्होंने प्रवचन दिया और वो प्रवचन सुनते सुनते धर्मराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कान प्रवचन सुनने की नहीं थी, वो मुस्कान थी व्यंग्य की। अब भीम हंसता तो ठीक है, नकुल सहदेव हंसते तो ठीक है, लेकिन धर्म प्रवचन पर धर्मराज मुस्कुराए तो संत को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि धर्मराज, उन्होंने पूछा क्यों मुस्कुराए? और धर्मराज झूठ नहीं बोलते थे, ओ धर्मराज झूठ नहीं बोलते थे, जो मन में वो जुबान पर। और उन्होंने जो उनके मन में चल रहा था संतों को कहा कि आप हमको कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले के धर्म की रक्षा, धर्म रक्षा करता है, हमने धर्म की रक्षा करी और हम जंगल में आए, आप हमको कह रहे हैं कि धर्म करने से सुखी होते हैं, हम दर दर भटक रहे और जिसने पाप किया वो महलों में है, और आप हमको हमारे सामने ही ये बोल रहे हैं। शायद ये सवाल आपके मन में भी होगा, ये सुनो, हाँ थे बोलो को नहीं तो छे, धर्मराज ने बता दिया। संत ने धर्मराज की तरफ देखते हुए एक सवाल दिया, बड़ा गजब का सवाल था, प्लीज प्लीज प्लीज। धर्मराज को एक सवाल दिया कि एक योद्धा रणांगन पर, युद्ध भूमि पर, धर्म की ओर से, सत्य की ओर से मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ने के लिए जा रहा है और दूसरी ओर से भी एक योद्धा लड़ने के लिए आया है, वो पाप के लिए लड़ने के लिए आया है, बुराई करने के लिए लड़ने के लिए आया है, लेकिन जो धर्म की ओर से लड़ने के लिए गया है वो गड़बड़ी में रक्षा कवच पहनना भूल गया है। क्या पहनना भूल गया है? हाँ, शिरस्त्राण, अंदर में जो लोहस्त्राण होता है ना, जिसको आप कह सकते हैं बुलेट प्रूफ, उस समय का चिलखत कहते थे मराठी में जिसको। अफजल खान के पास जाते समय शिवाजी महाराज ने दी चिलखत नहीं पहना होता तो चिलखत पहनना भूल गया, बोले रक्षा करने वाला जो सूत्र है वो पहनना भूल गया बोले। और लेकिन धर्म की ओर से जा रहा है, भगवान के लिए जा रहा है, अच्छी बात के लिए जा रहा है, और सामने वाला मतलब चिलखत पहन करके आया है और दोनों लड़ रहे बोले। बोले कौन जीतेगा, धर्म से ओर लड़ने वाला जीतेगा कि पाप की ओर से लड़ने वाला जीतेगा? हा? क्यों भाई, आप तो कहते हैं ना ये तो धर्मस्थ तो जया, जिधर धर्म उधर जाए। तो संत ने पूछा उनको वो क्यों हारा, उसका क्या कारण, हारना नहीं चाहिए उसने। धर्मराज ने कहा कि योगीराज आप युद्ध की गहराई को नहीं जानते, आप युद्ध के रहस्य को नहीं जानते। बोले क्या बता दें? बोले वहां लड़ने के पहले डिफेंस बहुत जरूरी होता है, सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। बिना सुरक्षा के यदि तुम लड़ने के लिए गए तो कितने अच्छे योद्धा होंगे तो तुम हारोगे हारोगे। और फिर संत ने धर्मराज को कहा तू धर्म के कारण से नहीं हारा है, तू धर्म के कारण से नहीं हारा है, तूने भी सुरक्षा की व्यवस्था करे बिना तू युद्ध में उतर गया, जुर्म उतर गया। तुझे पता था कि शकुनी सामने है, दुर्योधन सामने है, तूने अधर्म नहीं करना है पक्की बात है, लेकिन सामने वाले को भी अधर्म करने का और उसका अधर्म का दाव अपने पर नहीं चले उसकी व्यवस्था तूने करनी चाहिए थी। श्री कृष्ण को किसी ने सवाल पूछा था तुमने द्रौपदी की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया फिर तुमने धर्मराज को क्यों नहीं किया? सवाल समझ में आ रहा है मेरे? यदि तुमने द्रौपदी को दुशासन के इतने बड़े षड्यंत्र से बचाया तो धर्मराज को क्यों नहीं बचाया? तो श्री कृष्ण ने बड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब दिया, बोले जितनी दुर्योधन में अक्कल थी, हेलो किसमें, दुर्योधन में जितनी अक्कल थी उतनी धर्मराज में होती तो धर्मराज नहीं हारता। अब सवाल पूछने वाला और चकरा गया, बोले क्या, बोले दुर्योधन को यह समझ रहा था कि धर्मराज के सामने मैं जुआ जीत नहीं सकता हूं, धर्मराज के सामने मैं जुआ जीत नहीं सकता हूं, धर्मराज मुझे हरा के रहेगा, इसलिए उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव शकुनी को बैठाया। किसको बैठाया? शकुनी को बैठाया। धर्मराज को भी इतनी अक्कल चाहिए थी ना कि शकुनी के सामने मैं नहीं जीत सकता तो मुझे बैठा देता, मुझे याद कर लेता। जब दुर्योधन का प्रतिनिधि लड़ रहा है तो तू भी मुझे मेरा प्रतिनिधि बना देता। और यदि कल्पना करो धर्मराज ने कहीं इतना छोटी सी अक्कल का उपयोग किया होता है तो शकुनी सक्सेस होता श्री कृष्ण के सामने नहीं। ये क्या है? ये संवर है। ये क्या है? ये संवर है। पांडव वनवास में क्यों गए? शकुनी के कारण से नहीं गए, दुर्योधन के कारण से नहीं गए, पाप के कारण से नहीं गए, सुरक्षा की व्यवस्था करे बिना गए, उस कारण से गए। इसलिए भगवान महावीर डंके की चोट कहते हैं कि अच्छे लोग पछताते हैं, उसका कारण है कि उनके पास संवर नहीं होता है। इसलिए जिस दिन मैंने तपस्या की आराधना शुरू करा था, मैं कहा था कि मोबाइल मत देखना है, टीवी मत देखना है, कि उसका जब आश्रय होगा तो लीवर गड़बड़ करेगा ही करेगा, दिमाग गड़बड़ करेगा ही करेगा। संवर की व्यवस्था पहले करनी है। इसको आपके बिल्कुल सिंपल भाषा में कहते हैं, बाढ़ आने के पहले पाल बांध लेना है। कब पाल बांधना? बाढ़ आने के बाद, पहले। आज जो मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस करी है, केवल संवर तत्व के आधार पर करी है। जितने जितने बीमारियां पहले महामारी के रूप में थी, और जिन बीमारियों को लोग समझते कि देवी का प्रकोप है, शीतला माता मरियाइन, ये कितनी देवियां तुमने तैयार कर रखी थी पता नहीं मुझे, लेकिन मेडिकल साइंस ने खोजा कि नहीं, इसमें देवी का कोई रोल नहीं है, इसमें देवी का कोई रोल नहीं, वायरस का रोल है, और इस वायरस को रोका जा सकता है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, ये संवर है। अब बिना वैक्सीन लगाए तुम ऐसा रहोगे और फिर कहोगे कि हमारा पापरा उदय हो गया, थारा पापरा नहीं, थारा बुद्धू पनारा उदय हो गया। इतो धर्म करियो, इतनी माला गिनी, इतनी तपस्या करी, इतना गुरुदेव का दर्शन करिया, इतनी तीर्थ यात्रा करी, इतनी उपवास करियो, यो करियो, नोरा बाग नारायण शिव में कहीं आए हो, कहीं काम आयो हमारा धर्म? हेलो, बोलते नहीं बोलते अपने? बोलते हैं। क्यों? कि आपने परमात्मा के नौ तत्वों को नहीं समझा है। देखिए गुरुदेव के जीवन की ओर, रतन ऋषि जी महाराज साहब ने उनको संवर का तत्व दिया, इतने गहराई से संवर का तत्व सिखाया, जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, दीवार के तरफ मुंह करके पढ़ाई को बैठ, संवर हो गया। अब सामने दीवार है, आश्रय कहां से होगा? और वो आश्रय नहीं होगा तो ज्ञान आ ही जाएगा। खुद्दे ही उसा संसंग हासम किडम च वज्जे। तीर्थंकर महावीर ने कहा उत्तराध्यन सूत्र में, तुझे दी शिष्य के रूप में जीना हो, किस रूप में? शिष्य के रूप में जीना हो, साधक के रूप में जीना हो, ज्ञानी बनना हो, तेरे ज्ञान को, तेरे शिष्यत्व को, तेरे समर्पण को सिद्ध करना हो, तूने दीक्षा ले ली तो ज्ञान आराधना भी कर रहा है, गुरु के अनुशासन में भी रह रहा है, लेकिन याद रख तूने ओछे लोगों के साथ संपर्क नहीं करना है। किनके साथ? हंसी मजाक तुझे करनी है ना, तो बड़े लोगों के साथ कर, ओछे लोगों की संगत मत कर। खुद्दे हिम स संसर्ग हासम किडम च वज्जे। ओछे लोगों का संसर्ग छोड़, ओछे लोगों के साथ खेलना छोड़, ओछे लोगों के साथ हंसी मजाक करना छोड़। तू भी इधर गुरु के साथ भी रहेगा और ओछे लोगों के साथ भी संपर्क रखेगा तो वो छे सक्सेस हो जाएंगे, गुरु फेल हो जाएगा। खीर बनाते हो ना? खीर बनाते हो ना? एक आध बार खीर का बर्तन खुला रख दो ना, ढक्कन मत लगाओ, ढक्कन मत लगाओ, कुछ भी पढ़ने दो उसमें, खीर रहेगी ना सुरक्षित। क्यों? संवर ने किया। क्या नहीं किया? संवर ने किया। इसलिए श्रावक के आठवें व्रत में अनर्था दंड वेर मन में कहा गया कि तेल का, पानी का बर्तन खुला नहीं रखना है। कहां से कौन डाल करके जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए स्वामी समर्थ रामदास ने संवर पर इतने इतने मनाचे श्लोक लिखे, इतने मनाचे श्लोक। दुर्जन वाक्य कहानी न पढ़ो, दुष्ट वाक्य कहानी न पढ़ो। क्योंकि वो कान में आएगा। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, जवाब दे सकते जरूर दीजिए। मैं आपको गाली देने की परमिशन देता हूं, मैं आपको गाली देने की परमिशन देता हूं, शर्त केवल एक है, जो गाली तुमने सुनी नहीं है वो गाली देनी है। बिना सुनी हुई गाली देनी है। हेलो, जो गाली तुमने सुनी नहीं वो देनी है। दे सकते हो? नहीं। गाली देने के लिए मना करनी चाहिए कि गाली सुनने के लिए मना करनी चाहिए? अब जब तुम गाली सुनोगे अंदर जाएगी, अब जो अंदर गया है वो बाहर आएगा। यदि कान का संवर किया आपने, अशुभ भाषा, ऊंची भाषा, गंदी भाषा सुनी ही नहीं, तो गंदी और ऊंची भाषा बोल सकोगे? आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप कहते ना मन में घना उल्टा विचार आवे, उल्टा सुनना बंद करो, मन में उल्टा विचार आएगा ही नहीं। जुबान और मन को कोई बिगाड़ता है, जुबान और मन को कौन बिगाड़ता है, तो कान बिगाड़ता है। यदि मन को सुरक्षित करना है तो कान को सुरक्षित करो। और सारी चर्चा में, फिलोसॉफिकली सारी चर्चा आपके साथ विस्तार से 13 तारीख के बाद करने ही वाला। बड़ी गजब की बात बता दो, छोटी सी चलते चलते बता रहा हूं। निगोह से चला हुआ जीव जब तक वो चौरेंद्र रहता है, कभी भी चौथे चौरेंद्र में से एकेंद्र में नहीं जाता है, चौरेंद्र से एकेंद्र में नहीं जाता है। जैसे वो पंचेंद्रिय हो गया, पंचेंद्रिय ने क्या, उसके पास कान आ गया। तो कान आने के बाद दो रास्ते खुलते हैं, एक तो मोक्ष में जा सकता है या नरक में जा सकता है, वापस निगोद में पहुंच सकता है। किसके? जब तक उसके पास कान नहीं है तब तक कोई जीव निगोद में वापस जाता। कान आया कि दो संभावनाएं बनती हैं, या तो वो सिद्ध बनेगा या वापस बुद्धू बनकर के सारी मेहनत पर पानी फिरेगा। इसलिए मन को संभालना हो, अगली बात कहूं, जीवन को संभालना हो तो कान को सुरक्षित करो, कान को संवर दो, कान को संवर दो। हम ये देखो, ये भी संवर हो गए ना। अब सबको पता है यहां पर छोटी सी भी आवाज होगी तो सुनाई पक्की देगी। इस संवर की बात है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? और गुरुदेव ने पूरे जिंदगी में पांचों इंद्रियों का पूरा संवर किया, न गलत देखा, न गलत सुना, न गलत खाया, न गलत की सोबत करी। बुरे व्यक्ति की सोबत गुरुदेव ने करी नहीं। अरे ये सोबत बुरे व्यक्तियों की सोबत, गलत व्यक्तियों की सोबत। प्रवर्तक सिंह जी की सेवा में हम लोग पहला चतुर्मास करने के लिए जोधपुर गए थे। जोधपुर के पहले पाली रुके हुए थे, और पाली में हम प्रवर्तक सिंह जी का नेटवर्क बहुत बड़ा, गुरुदेव की सेवा में रहे हुए तो सब लोगों का परिचय। तो सारे श्रावकों का परिचय, वहां के सारे श्रावक आए। अब उसमें से नाम नहीं लेता हूं मैं, सॉरी। एक श्रावक आया और उसने मेरे कान में कचरा डालना शुरू किया। उधर के संतों के उसने कपड़े धोने शुरू करे। तो हमारे गुरुदेव के संस्कार, मैंने कहा श्रावक जी, जिन संतों की बात आपका मेरे पास करे उनके पास जाकर करो, मेरे पास मत करो। मैं ये सुनना पसंद नहीं करता हूं। उसके बाद वो श्रावक जी वापस आए ही नहीं। विहार के दिन दिखे तो मैंने कहा श्रावक जी आप पास नहीं आए। बोले मैं साहब सुनते ही नहीं तो किस लिए आओ, सुनते ही नहीं तो किस लिए आओ। और फिर जैसे जोधपुर गए चतुर्मास के लिए, वह पहले दिन ही व्याख्यान में डिक्लेयर कर दिया कि जिसको भी कचरा डालना हो हम यहाँ कचरा कुंडी लेकर के आए हैं, नहीं किसी ने हमारे पास कचरा डालने का प्रयास नहीं कर। निंदा करने वाले से भी अधिक भयंकर कोई है तो निंदा सुनने वाला। सुनने वाला नहीं हो तो निंदा करने वाला जिंदा रह नहीं सकता है। निंदक को संजीवनी कौन देता है, ऑक्सीजन कौन देता है? हेलो, आप ये बुरी बातें सुनना बंद करो तो बुरी बातें करने वाला रहेगा नहीं। मार्केट में जो माल बिकता नहीं उसका प्रोडक्शन कोई करता नहीं, उसकी दुकान कोई लगाता नहीं। अब इन सारी बातों के कस्टमर बहुत है, किसके? बुरी बात सुनने के। आप तो अच्छे हो, अच्छी बात सुनने के लिए यहां पर आए हो, है ना? यदि ये संवर हो जाए, इसको क्या कहते हैं, और आराम से आप चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, जितने भी तुम्हारे मेंटली प्रॉब्लम है वो किसके कारण से? संवर नहीं होने के कारण से। यदि संवर है तो समस्या ही नहीं है। बड़ा पुराना जोक है, कई बार आपने सुना होगा कि पागल खाने को विजिट करने के लिए मंत्री गए। किसको? मेंटल मंत्री गए, और मंत्री पूरा घूम करके आए, ट्रीटमेंट भी देख करके आए। तो मंत्री ने पूछा कि कोई पागल वापस स्वस्थ हो जाता है क्या? बोले हाँ होता है ना। बोले तुम कैसे पहचानते फिर उसको, कैसे पहचानते? बोले कुछ नहीं, हमारी आगे जो है एक टंकी लगी हुई है उसमें पानी आता है। रेंदे अभी अभी रेंदे रेंदे अरे अभी रेंदे बैठ जा, पानी आता है और हम वो टंकी खाली करने के लिए कहते हैं। क्या करें? टंकी खाली करने के लिए कहते हैं। और जो पागल लोग टंकी खाली करने में लग जाते हैं, आने वाला नल बंद नहीं करते हैं, समझते कि अब तक इसका बाहर जाने का टाइम आया नहीं है। और जो आता है और टंकी खाली करने के पहले पानी का आना बंद करता है, समझते कि अब ये बाहर जा सकता है। सॉरी यार, उस मंत्री ने कहा अरे इसको सयाने कहते हैं, ये तो मेरे भी ध्यान में नहीं आया, ये तो मेरे भी ध्यान में नहीं आया। अभय कुमार बुद्धि निधान के पास, जिस समय वो राजा श्रेणी के पास पहुंचा नहीं था, तब समय की कहानी है। सवाल भेजा गया था सागर का पानी तोल करके बताना। किसका पानी? सागर का पानी तोल करके बताना। इज इट प्रैक्टिकल, इज इट पॉसिबल? अभय कुमार ने जवाब भेजा, पहले जितना अभी सागर में पानी है उतना हम तोल के बताएंगे, पहले सागर में पानी जो आता है उसको बंद करो। सागर में पानी की आवक बंद कर दो, हम पानी तोड़ के बताएंगे। समझे बात को आप? पाप का सागर भी सोख सकते हैं, दुख का सागर भी सोख सकते हैं, यदि इसका आने का रास्ता बंद कर दिया तो। हम सब बहुत सयाने हैं, दुख का आने का, पाप का आने का रास्ता बंद करते नहीं, अनिदर झाड़ू लगाते रहते। हम पीछे गए ता झाड़ू लगाया, घर साफच नहीं हुई हो। गुरुदेव के जीवन में पूरी संवर की कहानी है। उन्होंने संघ को संवर दिया, संघ को संवर दिया, समाज व्यवस्था को संवर दिया। वो संवर दे पाए इसलिए पूरे संप्रदाय के इस रणांगण में श्रमण संघ उनके रहते हुए बलशाली था, समर्थ था, कि उन्होंने पूरी व्यवस्था में संवर दे रखा था कि इसका प्रवेश संघ में नहीं होगा, यानी नहीं ही होगा। बड़ा गजब का प्रसंग है, आपको कितना समझ में आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन देने से रोक नहीं पा रहा। प्रवर्तक सिंह साहब पंजाब में थे और उस समय किसी एक बात पर गुरुदेव के रहते हुए कई साधु साधियों को संघ से अलग किया गया था, और बड़े वो साधु साधी मूर्धन्य साधु साधी थे, मार्तंड साधु साधी थे, उनको अलग किया गया था। लेकिन वो अलग रह नहीं सके, उन्होंने वापस अपने गलती की स्वीकृति दी और गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हमको संघ में ले लो। और वे साधु साधु मुझे मिले, मैंने कहा आप वापस क्यों आए संघ में? अपनी आदत तो पता है आपको, मधुमक्खी के चेते को छेड़ना, आप वापस क्यों आए? बोले प्रवीण तुझे क्या बताए, वो गुरुदेव की आज्ञा निकल गई कि ये संत साधु साधु साधि श्रमण संघ में है नहीं, श्रमण संघ में नहीं है, सारे पंजाब के स्थानों के प्रवेश हमारे बंद हो गए। कोई ना चौमासी की विनंती करे, ना कोई स्थानक में आने दे। क्या व्यवस्था बनाई थी गुरुदेव ने, कि गुरुदेव ने कह दिया कि इस संघ में नहीं है, तो कितना ही मार्तंड। सारे नाम मुझे भी याद है, प्रवर्तक सिंह जी को भी याद है, पर ऑनलाइन बोल रहा हूं इसलिए नाम ले नहीं रहा हूं। ये संवर की व्यवस्था थी उनकी, और संवर की व्यवस्था आपको यहां पर करनी है। ये गुरुदेव का धर्म संघ, ये गुरुदेव की राजधानी, ये गुरुदेव का कैपिटल, ये गुरुदेव का कैपिटल है। मारवाड़ की राजधानी है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुदेव की राजधानी यदि कोई है, बोलिए बोलिए। अरे क्यों ऐसा भी बोल सकते हो, गुरुवर की पुण्य भूमि गुरुवर की राजधानी है, गुरुवर की पुण्य भूमि गुरुवर की राजधानी है। और इतनी पुण्य भूमि, धर्म की भूमि उन्होंने अपने साधन से बनाई, इस धर्म भूमि को हमें, इस संघ भूमि को हमें क्या करना चाहिए, अब संवर करना चाहिए, संवर करना चाहिए। दूध में पड़ा हुआ, खीर में पड़ा हुआ एक चिमट भर नमक, कितना कितना नमक लगता है दूध फाड़ने के लिए? दूध फाड़ने के लिए नींबू का रस कितना लगता है? एक लीटर, दो बूंद, पक्का? तो गुरुदेव ने इतनी मेहनत से खीर बनाई है, ये धर्म की खीर है या नहीं है? ये जो माहौल है ऐसे अगेन एंड अगेन, ये जो माहौल है ये सारी गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की मेहनत और उन्होंने जो अपना जीवन बनाया उसके कारण से। और इस खीर में तुम्हारे और मेरे रहते हुए कोई नींबू का रस टपक जाए, कोई दो बूंद नींबू का रस टपक जाए, इस खीर का पान कर पाओगे? हेलो, अरे खीर बना नहीं पाए। जैसे गुरुदेव ने खीर बनाई वैसी खीर हम नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूं, जैसे आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज सामने, विनय ऋषि जी महाराज सामने, महासतीषी उज्जवल कुंज जी महाराज सामने गुरुदेव ने इस भूमि की खीर बनाई है, वैसे खीर आप बनाना बहुत, लेकिन इस खीर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो निभानी ही होगी। क्या करना है उसके लिए? संवर्ष। यहां सांप्रदायिकता का नींबू का रस, सांप्रदायिकता का नमक, विद्वेष और द्वेष फैलाने वाला नमक, हेलो जल्दी बोलो, आने देना है? आने देना है? याद रखना, यदि आ गया ना, आज जैसे तुम प्रेम से बैठे हो ना एक दूसरे के पास, बैठ नहीं पाओगे। अरे संप्रदाय संतों को संतों से मिलने नहीं देता, और मैं तो हमेशा पूछता हूं, शैतान शैतान से मिल सकता है? हेलो, और संत संत से नहीं मिले तो क्या गजब की बात है। एक महापुरुष गुरुदेव के दर्शन के लिए यहां पर पधारे थे, बड़े दूर से आए थे, प्रवर्तक से जी उस समय बंबई पधारे हुए थे, वो आए, हम गुरुदेव की परंपरा थी कोई भी आ जाए तो स्वागत के लिए जाना है, हम जाकर स्वागत करके लेकर के आए विराजे। अब दूसरे दिन प्रवचन, और प्रवचन की व्यवस्था आप जानते हैं कि उस समय पंडाल तैयार था, वहां पर सिंहासन नहीं था, वहां पर चौबूतरा जो पट्टा था पट्टा, और शाम के समय में संत मेरे पास आए और उन्होंने कहा, जैसे यहां पर है ना ये दो पट्टे, उन्होंने कहा प्रवीण ऋषि जी वो थोड़ा पट्टा अलग कर लो ना, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो पट्टे में। मैंने कहा क्यों महाराज, कहीं संगठन होगी? नहीं नहीं बोले, हमारी परंपरा है कि पट्टा अलग होना चाहिए। मैंने कहा महाराज साहब ये गुरुदेव की भूमि है, यह पट्टा अलग करूंगा ना तो सारे लोग मुझे पूछेंगे अलग क्यों किया, यह तो सलग पट्टे की परंपरा है। यह परंपरा किसकी है? यह अलगाव की परंपरा नहीं है, यह लगाव की परंपरा है। और मैंने उनको बताया उस समय कि विद्यानंद जी आए तब भी यही था, मंदिर मार्ग के संत आए तब भी यही था, और कोई भी आए तो व्यवस्था यही थी, व्यवस्था यही रहेगी। ये लगाव की व्यवस्था है, अलगाव की व्यवस्था नहीं है। यहां पर अलगाव करने के लिए मुझे मत कहो। आखिरकार उन्होंने रास्ता क्या निकाला पता है आपको? बोले अपन अपन स्वाध्याय भवन में प्रवचन करते। मुझे आप देखे, आप मुझे, आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आएगी। अस्वध्याय भवन में वो मंच बना हुआ है, और वहां वो मेरे पास में बैठ गए, वहां उनको दोष नहीं लगा। मैं तो आज भी सुन सुन करके ना सोच सोच कर परेशान हूं, उठे संगठन नहीं लगे ना आठे संगठन लगे, कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने उनको पूछा भी मजाक में, मेरे सब कौन छूत और कौन अछूत, आप अछूत कि मैं अछूत, कौन अछूत है? अरे महावीर ने तो किसी को अछूत रखा ही नहीं। तो ये गुरुदेव का जन्मोत्सव चल रहा है, और गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में शुभ का आश्रय किया, अशुभ को आने नहीं दिया, इसलिए वो अच्छे रह करके भी सफल हुए। आपको अच्छे रह करके सफल होना है तो संवर का तत्व सीखना है। चरारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम मंगलम। चरारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पन्नतो धम्म लघुतमा। चत्तारी शरणम भवज्जामि, अरिहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: दैनंदिन गोष्टी तुमच्या आमच्या कामाच्या व्यापात राहून गेलेले ते संवाद आणि मनाच्या कोपऱ्यात साठलेल्या त्या रोजच्या गोष्टी खास माझ्या सखींच्या भेटीला। चला तर जरा निवांत बसूया, थोड्या तुमच्या, थोड्या माझ्या आणि काही आपल्या सर्वांच्या गोष्टी शेअर करूयात गोष्टी तुमच्या आमच्या या कार्यक्रमात। सोमवार ते शनिवार सकाळी 11 वाजता ऐकत रहा

राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।